ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी आखन लगे हुए चनना मां नू तके मार के रब नू घरों बाहर कढ के ते संतां दे डेरियां ते सुख भालदा फिरदा है। वो तेरी मां नहीं, वो तेरा रब है। जे तू सुखां दे नाल झोलियां भरनिया ने ते जा अपनी मां दी सेवा कर, तेरा रब तेरे घर बैठा है। ते सतसंगियो कलगीधर पातशाह भी यही आख रहे ने, कहिंदे जिहड़ा सिंह अपनी माता पिता दी सेवा नहीं करदा उहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं है। जिहड़ा अपने बजुर्गां दी सेवा नहीं करदा, सत्कार नहीं करदा, उहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। उहदे नाल रिश्ता है जो अपने माता पिता दा सत्कार करदा है, अपने बजुर्गां दी संभाल करदा है। ये भी एक रहत है।

नाम तेरो आसनो। हे मेरे ठाकुर बैठल वाहिगुरु, जिहड़ा पंडित ने आसन लाया है ना, मैं तेरे नाम का ही आसन बनाया है। नाम तेरो आसनो, मैं उस नाम नु आसन समझना। नाम तेरो उरसा, उरसा कहते ने बट्टी नु जिदे नाल केस रगड़िया जाता है। नाम तेरो उरसा, फिर कहते नाम तेरो केसरो लै छिड़का रहे, कहते वो केसर रगड़ के तेरे उत्ते छिड़का कर दे ना, मैं तेरे उत्ते नाम का ही केसर छिड़क देता है। मैं सब कुछ नाम नहीं समझे। अगे भगत जी कमाल की गल कहते हैं।

संगी सज्जन, जितने भी माई पाई सर गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पवित्र चरणा अंदर कोमल चरण अंदर जुड़ बैठे हो, पावन दरबार दिया अमृत वेले दिया हाजरियां अते इलाही बाणी का कीर्तन नेता प्रति सिख के जीवन सिख के कर्म अनुसार नेम अनुसार रोजाना सत्संग हाजरियां पढ़ने वाले हो, गुरबाणी का मनोहर कीर्तन ये मन नूं सुख देण लई, ये मन नूं शांति देण लई, ये सड़े हुए मन नूं हरा करन लई, ये तपदे हुए मन नूं ठंड पाउण लई इक कीर्तन ही एक आसरा है, जो कि इस कलयुग के विख्यातां तों इक कलयुग के तत्ते झोलियां तों इक कलयुग के सड़े हुए मन नूं ठंड पाउण लई इक कीर्तन ही है। यह सड़िया हुआ मन इस कीर्तन नाल ही ठंडा होता है, इस कीर्तन नाल इस मन का जहर निकल सकता है। जिवें सपिया दा एक बीन वजा के एक राग की धुन कढ़ के वह जहरी सप नू जहरीले सप नू और जंगल वाले सप नू अपने वस च कर लैंदा है कील लैंदा है, इवें ही यह मन जहरी है, यह मन जहर का भरिया होया, यह मन डंगण वाला है, इनू भी कीलण वास्ते इनू भी वस करन लई इनू भी सीधे रस्ते ते पाउण लई यह गुरु का शब्द यह गुरु का कीर्तन एक आसरा है एक टेक है। रोजाना आप कीर्तन सरवण करते हो, सतगुरु के चरण कमला अंदर जुड़ बैठे हो, थोड़े जे अखर सरवण करना फिर समाप्ति कर दिया। एक बार प्यार नाल बोलो साधना। कैसा है गुरु का प्यार जिथे असी रोज आते हैं, कहो जा आनंद इथों मिलता है, आ पंक्तियां तुहाडे सामने पेश करना, ते किन्नी दयालता है सतगुरु विच, किन्ना दयालु है किन्ना कृपालु है किन्नियां बख्शां दा भंडार है किन्ना रहमतां दा भंडार है। भाई साहब जी बयान करदे भाई साहब भाई गुरदास जी महान फिलासफर गुरमत दियां नींहां रखण वाले गुरमत दियां बुनियादां लिखण वाले सिखी दा सिद्धांत मुढ़ला दसण वाले भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे आंब की सदर कत मिटत आंबली खाए, आंबली खादी हो या इमली अंब की सदर नहीं लेंदी। जे कोई कहे कि इमली खा के मैं अंब की इच्छा पूर्ण कर रही है अंब की सदर रह गई है, भाई साहब जी कहने नामुमकिन है। आंब की सदर कत मिटत आंबली खाए, तो दलील पता क्यों दिती है, कहने पिता का प्यार ना परोसी पै पाई है। जो प्यार बापू कर सकता है जो प्यार पिता कर सकता है वह प्यार पड़ोसी तो नहीं मिल सकता, वो नाल दे गुआंढी तो नहीं मिल सकता, वो नाल दे

परम सत्कार कुशासन। सतगुरु जी, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज, इस पावन शब्द दे विच उस परमात्मा दे नाम दे सिफत करदे हन, दुख भंजन तेरा नाम जी, दुख भंजन तेरा नाम, सर्व रोग का औखद नाम, सारे रोगां दा दारू वाहेगुरु दा नाम है। पर ए नाम दा दारू उन्हां नूं मिलदा है जिहड़े नाम नाल जुड़दे हन। अरदास करदे हां, हुण अरदास कीती ते हुणे ही मन विच ख्याल आ जांदा जो हुणे कीता हुणे मिल जावे। अरदास कीती ते नाल ही फल दी इच्छा, लेकिन कुछ मन जुड़े, कोई बाणी दा शब्द मन दे अंदर वसे, हुण दवाई दा असर भी ताही होंदा है ना जे दवाई खाई। दवाई लैके आ गए, डाक्टर कोल गए, डाक्टर ने दस दिता तेनू ए बीमारी है, ए दवाई लै, इस नू खा, आराम आ जाएगा। डाक्टर कोल भी चले गए, अपने आप नू दिखा भी दिता, दवाई भी खरीद ली, घर आ गए, दवाई लिया के बारी विच रख दिती, आप मंजे ते लम्मे पै गए। कोई हाल पुछन आया, की हाल है, ते मंजी ते पिया लम्मा।

वाणी सवाल है और जवाब है। दुखां नूं दूर करन वाला नाम है, पर किस तरह? आठ पहर आराधिए।

पंडित लालचंद ने गुरु साहबान क्या महाराज एदे कोल गीता पढ़वाओ। सतगुरु जी हस पे ते हस के कहन लगे लालचंद बड़ा चतुर निकले, बड़ा सियाना निकले, वादा ते करके गया सी उनू लियावांगा जिन्हें गीता कदी पढ़ी नहीं, पर उनू लेके आया है जिड़ा बोल ही नहीं सकता, सुन नहीं सकता। इन्नी गल कह के फिर सतगुरु देख दे छजू चीवर वाल हन ते कहंदे लालचंद नूं ने चंगा लालचंद जिन्नू भी लैके आ गए ये गुरु नानक का घर ऐसा है इत्थे जिहड़ा जैसी भावना लैके आंदा है उसनू ओहो जिहा फल मिलता है। तेरी इच्छा है इहदे कोल गीता सुननी ते गुरु नानक तेरी इच्छा पूरी करेगा। गुरु साहिबां दे हाथ विच हमेशा एक छड़ी हुंदी सी खूंडी, ओ खूंडी गुरु साहिबां ने छज्जू चीवर दे सिर ते रखी मेर भरी निगाह दे नाल छज्जू चीवर वल तकिया ते मुस्कुरा के कहंदे ने छज्जू ओ भाई सिखा पंडित जी की इच्छा है कि तू गीता सुनावे। भाई सिखा इन्हां दी इच्छा पूरी कर पर सुन कली गीता पढ़नी नहीं नाल श्लोकां दे अर्थ भी करके दसने हन। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। जद गुरु दी मेहर दी नजर होई सिर ते गुरु साहबा ने अपनी छड़ी रखी ते ओह छज्जू चीवर जिहदे मुंह विचों लारां वगदियां सन वाल खिलदे शरीर दी सुध नहीं रंग ही बदल गया गुरु दी शोभ मिली चेहरा ही होर हो गया। जिहदे मुंह विचों लारां वगदियां सन बैठा दरबार विच इधर उधर झाकदा सी जिवें बावरे शदाई बैठे हुंदे ने हुण रंग ही होर हो गया। हाथ जोड़ के परे दरबार विच खड़ा होया और फिर चरना ते मत्था टेकया और फिर मत्था टेक के फिर खड़ा होया हाथ जोड़े ते कहन लगा दाता तेरा शुक्र है तू मैनू नवा जीवन दिता है शरीर दी सुध दिती दुनिया दी सुध दिती दुनिया दी सोझी दिती ते पातशाह हुण हुक्म कर। साहब जी कहन लगे छज्जू गीता पढ़ के सुना नाले अर्थ करके सुना ते छज्जू चीवर कहंदा दाता हुण ते तेरी मेहर हो गई है हुण ते तू हुक्म कर ए गीता ते की सारी कायनात पढ़ के सुना दें। आखो सतनाम श्री वाहे सारी दुनिया दा हाल दस दें इतनी तेरी मेहर हो गई। ते छज्जू चीवर पंडित दे सामने बैठा गीता पढ़ता है नाल श्लोक दे अर्थ कर करके दसदा है ओ ज्यो ज्यो गीता पढ़ता है ते पंडित लालचंद कोल बैठा रोई जांदा ज्यो ज्यो सुनदा है अखां विच अथरू डिगदे हन। ते जद गीता दी ए सारी कथा दा भोग पया ते लालचंद हुण उठया भज के चरण पकड़े और चरणा ते सिर रख के ज्यों रोन लगा कहन लगा महाराज मैनू खिमा कर
मैं भूल गया तेरा परतावा लैण आया। असि औगण आ रहे तेरा परतावा लैने। सतगुरु कहंदे ने लाल चंद रो ना उठ, वो लाल चंद तेरे सदका एदे भी भाग जाग पे। आखो सतनाम श्री वाहेगुरु। और अज भी हरियाणे दे विच ए पंजोखरा साहब गुरुद्वारा इस घटना की याद अज भी दवांदा है। और जेड़े लोग उते श्रद्धा भावना नाल जांदे हन उन्हां दी मनोकामना अज भी पूरियां होंदियां हन। और फिर गुरु साहब दिल्ली गए, समा समाप्ति दा हो गया है, इतिहास काफी लंबा है पर समा इतना नहीं। दिल्ली जद महामारी फैली, हजारां लोग मरण लगे, तां उस वक्त गुरु हरकृष्ण साहब जी महाराज ने अपने चरण धो के चरण पौल दिती और उहदे नाल इह जिहड़ी बीमारी सी दूर होई। और अज भी देखो कदी दिल्ली जाओ, जिन्हां हाली दर्शन नहीं कीते गुरुद्वारा बंगला साहब, अज भी उत्थे अमृत दे सोमे उसे तरह पे चलदे हन। और अज भी जिहड़े श्रद्धा नाल जांदे हन उहनां दे दुख दूर होंदे ने। ते जिहड़ियां भी संगतां जाके मत्था टेकदियां ने अपने आप उहनां दे मुंह तों निकलदा श्री हर कृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। आओ शब्द की आखिरी पंक्ति पढ़ के इथे करिए समाप्ति। और हुण समा तो तकरीबन हो ही चुका है, 7:10 तो 8 तक दशमेश दरबार हाजरी भरनी है। और कल 7 to 8 इसे स्थान ते फिर आपां सारे गुरु जस करांगे। आओ आखिरी पंक्ति सारे रल के पढ़िए।

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलो मंग रहे ते मंगिया उथो ही जांदा है जिथो दात मिलदी हो, जिथो मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलो मंग रहे ने, पर गल कमाल दिए मंगल वाले बहुतात विच हन जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दीआं मंगा, पर हे परमात्मा तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दीआं मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है ते साहब कहिंदे ने आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देण तों इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगणा किवें है ते मंगणा

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ है। हां मंगना चाहिए पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे। हे परमात्मा जिन्हें मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगा, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है पर सब दियां मंगा तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पैक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो कि निर्धन नू कमजोर नू कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं, इसलिए कहिंदे ने मान मंगे आ। फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगे आ, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके उन्हूं सांभ सका। धन लक्ष्मी सुत दे धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहबाणी विच कहिंदे ने ना निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा, इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो तान लक्ष्मी सुत दे, परमात्मा दे तन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत धन्ना जी कहिंदे ने घर की गेहन चंगी जन धन्ना लेवे मंगी, घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी चाहीदी।

मंगी है। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कभी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवें मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा है, ना दिन विंदा ना रात विंदा, वो पुकारा करी जांदा है। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना, कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही, मंगती का पहला गुण है जी। कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हन, तालाब हन, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं, ये पानी मेरी प्यास नहीं बुझा सकते, मैनू तां एक बूंद चाहिए, एक बूंद वास्ते मैं इतना प्यू प्यू कर रही हूं। ख्याल करियो जी, एक बूंद जल कारण चातक दुख पावे, एक बूंद वास्ते वो किन्ना बोल ले। कहना जा जाके सौ, आप भी सौ ते मैनू भी सौन दे, क्यों नींद हराम कर रहे। बबीहा नहीं मुड़िया जी, बबीहा बोलता जा रहे। आखिर की होया, वो एक लिव नाल बोल रहा सी, एक कोलों मंग रहा सी। बाणी विच फैसला है जी,